अन्य देवता पानी देवता बैसंसर देवता लोण पंजवा पाया कृतता हुआ पाक पवित्र पापी शिवतन कंडिया तुका पया तिते जित मुख नाम न उचरै बिन नावै रस खाए नानक केवे जानिए तित मुख का पाए।

जित कीता पाईया अपना सा घाल बुरी क्यों घालिया मंदा मोह लगी चाहिए लंबे दर निहालिया साहेब नाल ना हारिए ते वेहा पासा ढालिया किस लाहे उपर घालिया किस लाहे उपर घालिया।

हरिमंदर दिल्ली में शीशगंज रकाबगंज वाला साहेब बंगला साहेब सतो चंडिया साहेब आदि दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बोला रे।

जम जंदार न आवे नेड़े त्रिसना अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरी प्रभ शरणाई जग

राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है आठो नंदन प्रथम राग पैरो वह करही पंच रागनी संग।

0: ऐसे चरण प्रताप ते दिन बड़े प्रताप तीन लोक जाय जाय करे रे नाम शब्द होरा सगल द्वार को छाड़ के कहो द्वारो द्वार बाह के किला जस गोविंदा स्वार्थ होरा राज करेगा खालसा आके रहे ना कोई कुआर हो सब लेंगे बचे शरण जो होए दोरा घुट के सभा मले जगी कर कुड़ा पासार डंका बाजे फले का लेह कलंक उतार चातर चक्र वर्ती चातर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सरदास सुजुते दुकाल
1: दरबारा लक्ष्मी खड़ी दरबारा

जी गुरु गरीब निवाज अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी के पावन स्थान की हाजरियां भरते हुए गुरु की संगतों वालों गुरबाणी के शब्द कीर्तन सत्कार वालों बेअंत माया अरदास कराई है पातशाह सतगुरु आप नाम जन कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी देर उगता दे नाम दे दात काज राज

सभी मानस की जात सब एक पहचानबो। करता करीम सोई रस करहीम, ओई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानबो। एक ही किसेव सब ही कुकुर देव, एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो। देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज, ओई मान सब एक बयान एक को भ्रमाओ है। देवदा देव जज गंधर्व तुरक, हिंदु न्यार न्यार देशन के भेद को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह एक बान, खाक बात आतस ओ आव कोर लाव है। अल्लाह अभेक से पुराण ओ कुरान, ओई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है। जैसे एक आग ते कनु का कोट, आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। केत कछ मछ केते उनको करत भच, केत अच वच हो सपच उठ जाएंगे। केत नभ बीच अच पच को करेंगे भज, के तक प्रतच हो बचाए खाए जाएंगे। जल कहा थल कहा, गगन के गौन कहा, काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज लीन, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत, कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदीना मकानी वासी, कित उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त, कित सुहा पे चढ़त कित दुख को भरत है। कैन में उड़त कित जल में रहत, कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हर देवता विरोध हर, दान बड़े बोध हर, बोधक प्रबोध हर, जापसी घस हर चंदन लगाए हर, चुआचार बूझ हर पाहन चढ़ाए हर, लापसी गा हर गोरन मनाए हर, मडी मडली पहार वेतन लगाए हर, छापसी गाय हर गंधर्व बजाए हर, किन्नर सब पच हर, पंडित तपंत हर, तापसी त्व प्रसाद भुजंग प्रयात छंद। न रागं न रंगं न रूपं न रेखं न मोहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वैखं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न शत्रुं न मित्पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न शत्रुं न भामं न लेखं न भेखं न जूनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध रूपं। नहीं जान जाई कछु रूप रेखं कहा, बासता को फिरे कौन भेखं कहा। नामता को कहा कह कहा, वे कहा कह बखानो कहे मैं नावे। न रोगं न शोकं न मोहं न मातं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं। अद्वैखं वेखं जो निस्वरूपे न

नाने हंग नगे हंग सने हंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न वित्रे न वसोभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायंग नरंगंग न रूपंग न रेहंग न लोभंग न चोभंग भूतंग अफेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग अजोनी अक्षयाद अद्वय अजोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न सोगंग भय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदैवंग सदा

सर्वभूपं कहु नेह गृहं कहु देह दुखं कहु औखदि रोग के शोक सुखं कहु देव विद्या कहु दैत बानी कहु जच्छ गंधर्व किन्नर कहानी कहु राजसी सात की तामसी हो कहु जोग विद्या धरे तापसी हो कहु रोग रहता कहु जोग जुगतं कहु भूमि के भुगत मैं भरम भुगतं कहु देव कन्या कहु दानवी हो कहु जश विद्या धरे मानवी हो कहु राजसी हो कहु राज कन्या कहु सृष्ट के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहु वेद विद्या कहु व्योम बानी कहु कोक की काव कथा कहानी कहु मद्र सारं कहु भद्र रूपं कहु मद्र बानी कहु क्षुद्र स्वरूपं कहु वेद विद्या कहु काव रूपं कहु चेष्टा चार चित्रं स्वरूप।

देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरपी तोर के पारसी हो कहूं पहलवे पस्तवे संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं जंत्र रीतं कहूं।

रंग रूप नहीं राग रेख जह जन्म जात नहीं भरम भेख जह गरम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितर मात जह नाम धाम नहीं बर्ग ब्याद जह रोग शोक नहीं शत्रु साध जेह त्रास वास नहीं देह नास जेह आद अंत नहीं रूप रास जेह रोग शोक नहीं जोग जुगत।

अलख रूप आसन अडोल जेह अमित तेज अक्षय तोल जेह ध्यान काज मुंजन आनंद कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन पितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई ऊर्ध पाह देसन भ्रमंत कई ऊर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र उचरंत वेद कई कोक काव कथत कतेब कई अगन होत्र कई पवन हार कई गर्त कोट मृत को हार कई गर्त साग पै पत्र भक्ष नई तदप देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व भरीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद गरम कहूँ अगन होत्र कहूँ तीरथ धर्म कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई गर्त भांत भांतन विचार नहीं नैक तास पायतन पार कई तीरथ तीरथ भरमत सोभरम कई अग्न होत कई देव करम कई गर्त वीर विद्या विचार नहीं तदव दास पायतन पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्रत उचरत सो करम न्योली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मह को बखान कहूँ गर्त ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरध चार कहूँ गर्त जक्ष गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत नाच कहूँ गात गान गीत कहूँ गर्त शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्म देश देश अनुदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत ऊर्ध लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदव दास पायत न अंत कई कर्त कोट विद्या विचार नहीं तदव देश देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हो।

अनखंड अमंड प्रचंड नरंजय रचयंग देव देव वरंग सबकी नी दीन जमीन जमाज रचयंग सर्व मकी नमका जय राग न रंग न रूप रखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भुयंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात वितंग जय रचयंग छत्री छत्र छितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नवखंड सचियो रज तामस तेज य तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधु रुबिंद नगिंद नगंग श्रेय जक्ष गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव देव अभिव नरंग नर पान रिपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेतजोत भुजंग किये देव देव सराद वितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न बात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जंपह किन्नर जक्ष जुवंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जाछ भुजंग दिए गज बाज रथादिक पांद गणंग भव भूत भविख भवान तुवंग जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली वन जास कियो फल फूल कली भू मेर आकाश निवास चितंग रज रोज एकादश चंद्र वृतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई

रंग न रेख रुगंग जे सोग न भोग न जोग जुगंग वो वंजन गंजन आदि सरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप अडंड प्रभा जय जम पद वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जपै सुत सिंध अधो मुख ताप तपै कई गल्पन लो तब ताप कर नहीं नयक कृपा निध पान पर जय फोकट धर्म सभत जह एक चित्त कृपा निध को जप है त्यो या भव सागर कूतर है भो भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रतीम वेद उचारत सार सुती जो वारस के जस के रस है त्यो

वेव वेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानिए। न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अधोग दाग दग है अभूत ब्रह्म वेख है। न दात मात जात है न पात जिहन वर्ण है अदेक शेख भेक है सदीव विश्ववरण है। विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्ववरण है जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है। अदवेख है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठौर में विशेक।

संक है, न मान है, न मौत है, न साग है, न संक है, न जाच है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साव है, न साह को कुमार है, न नेह है, न गे है, न देह को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेख है, न कर्म है, न धर्म है, अजन्म है, अभेद है, न तात है, न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है, न रंग है, न भूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेद है, न द्वी है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदैव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अवेग है, बली अरूप राग रंग है, न द्वैख है, न भेख है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चिहन वर्ण है।

चक्र चिन्ह न वर्ण जा को जात पात न भेग, रूप रेख न रंग जा को राग रूप न रंग, सर्व लायक सर्व घायक सर्व ते अनभंग, सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल, दीन बंध दयाल स्वामी आद देव पाल, दीन बंध प्रवीण श्री।

दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरख ब्रह्माथ दुष्ट हर्ता सृष्ट कर्ता जगत मय जय गाथ भूत भव भविख भवान प्रमाण देव गंज आद अंत नाथ श्री पद परम पुरख।

असुर मर्दन रम्मक वर्दन छत्र छिदे आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडासुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र विदंशन महग मथे दानव प्रहारण नरक निवारण अधम उदाहरण ऊर्ध अधे जय जय हो सीमा खासुर मर्दन रम्मक वर्दन आदपते डाबरू डवंके बुबर बवंके भुजा फरंके तेज बरंग लंगुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध चमके भूखण तमके यद सिद्ध झमके फुंक फनंग जय जय हो सीमा खासुर मर्दन रम्मक वर्दन दैत जिणंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकण सुजा फलंकण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार पिपर खंड दुष्ट प्रकर खंड पुष्ट प्रहर खंड दुष्ट मथे जय जय हो सीमा खासुर मर्दन भूमा का स्थल ऊर्ध धे दामनी प्रहासन सुछम निवासन सुष्ट प्रकाशन।

असुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघोघ निवारण दुष्ट प्रजारण सृष्ट उबारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण सहस प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निबाहन तेज तुरंग जय जय हो से मैं खासुर मर्दन भूम बदकाश पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़ विवृतंते जोग जयंते मनुज मथंते।

नर्मन बंधन दुष्ट निकंदन मृष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमार अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकनी प्रसोहन सुर नरमोहन सिंहारोहण बितल तले जय जय हो से सब ठौर निवासन बाए पताल आकाशन ले संकटे निवारण अधम उधारण तेज प्रकर खण तुंद दबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हो सी शस्त्र प्रकरखण आद अनिल गाद अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ

मर्दन आद जुगाद अगाध गते खतरियान खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते ब्रडलाज बिहंडन चछुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण।

तुल बले दान वि प्रकार खंड सरोवर वर खंड दुष्ट प्रदर खंड बितल तले अष्टायत बाहन बोल निबाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय उसे मै खासुर मर्दन आद अनाद अगाध प्रते दुख दुख प्रबच्छन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदा है अर्दल।

करी ली गर्भ कही ली जोत जति ले तुंद मते अष्टायत चमकण शस्त्र जमकण दामिन दमकण आदिते डुक डुकी दमंके बाघ बुबंके भुजा फरंके शुद्ध गते जय जय हो से माखा सुर मर्दन आद जुगाद नाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक भटे बापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंडे अखंड।

पत्र पूजा ग्रंथ कई सिद्ध साध सूरज सिवंत कई बलड सूरज सिद्धता कराए प्रभ एक रूप द्व कै लखाए अंशिज तेज अनभ प्रकाश दाता दुरंत अद्व ना सब रोग सोग ते रहत रूप अनभ अकाल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोग।

बीन स्नेह सबोधन नेह बिरक्त अगेह छह जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह काहे को डोलत है तुम्हरी सुत सुंदर श्री पद्मावत लह रोकंते और सोकंते जल जोकंते वो भात बचावे शत्रु अनेक चलावत गावत तन एक न लागन पावे रखत है अपनो कर दयकर पाप समूहन भेट न पावे और की बात कहा कहे तो सो सो पेट ही के बड़ बीच बचावे जाच भुजंग सो दानव देव भेव तुम सब ही कर ध्यावे भूम आकाश पताल रसातल जाच भुजंग सब शरण्यावे पाय सके नहीं पार प्रभाहू को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानन से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो वेद कतेब न भेद रखयो सब हार परे हर हाथ न आयो पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनाद सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मै जह को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सब बजहारे भेद न पाय सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे आद अनाद अगाद अवेख अद्वेख जप्यो तिन ही कुल तारे तीर्थ कूट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिरे कर वेश तपोधन केश धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुख कारे दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रन के साल है दान के देवैया महामान के बढ़िया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया।

पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमाल जावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना के तेग बांधे अरब के अरबी अराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे सी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछान निज काम है। मरहटा मंगेली तेरी बान सुत तपस्या करे दृढ़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दलवाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहले मांग देश के मंगेली वीर बंग सी बुंदेले बाब पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चिन मचीन के शीस ने आवे ते बते ध्याए दुख देह के दलत है। जिने तो हे ध्यायो तिन पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सिं फलत है। देव देव तान को सुरेश दान वान को महेश कंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साधा दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पाछे पहुचात दाहे चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है। केते इंद्र द्वार कते ब्रह्मा मुख चार कते कृष्णा अवतार कते राम कहियत है। केते ससरासी कते सूरज प्रकाशी कते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। केते महादीन कते व्यास ब्रवीन कते कुमेर कुलीन कते जच कहियत है। करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाइये न पार व अपार के बखानिये। अद्वै अविनाशी परम पूरन प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानिए। जंत्र हूँ न जात जाय की बाप हूँ न माए ताकि पूर्ण प्रभा के सो छटा के अन मानिए। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है नि जंत्र कह के जानिए। तेज हूँ को तर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रचक है गुणन को उपहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छा अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहंदा है गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हों के काल है के सत्रन के साल है के मित्रन को पोगत है के प्रीतता की बासी है। जो कहूँ को जंत्र है के तेज हों को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हों को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है। विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के दुख को सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाइये न पार परावार हमको पार जागो की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय गावे हब्बसी हलबिधावे पूर्वी न पार पावे असत्य नाश है। देवन को देव महादेव हूँ के देव है निरंजन अभेवनाथ अद्वै अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन ब्रवीन है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया ध्रुम छाल के। कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरा वध छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के कूल के। हंसनी से सिहारूम हीरा सी हुसनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के। पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद नी के रही झूल के। चंपासी चंदेरी गोड चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी पुर सी ससी सुरंगाबाद नी के सोहियत है। हिमासी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंग धार बकान सी बिलंदावाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासीज के दुरंगी मकरान के बृदंगी तेरे गीत गायत है। भखरी गंधारी गोर कखरी गर्देजाचारी पवन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है।
पूरब पलाऊ काम रूप यो कमाओ सर्व ठौर में विराजे जहां जहां जाइयत है। पूर्ण प्रताप जंत्र मंत्र ते अता बिनाथ की।

श्लोक पौन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर महत करमे आप

सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब की मत मिल की मत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखां कियां वड्याईया, तुद विण सिद्धि कनै न पाईया, करम मिलै नाही ठाकर हाईया। आखण वाला क्या वेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू दहे तसै क्या चारा, नानक सच सवारन हारा। आसा महला पहला, आखां जीवां विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ। सचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलियह दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, सचा साहिब सचै नाए रहाओ। सचे नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा न होवै घाट ना जाए। ना

होए जे वड आप ते वड तेरी दात जंदन कर कह कीती रात खसम वसा रहते कम जात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनाओ करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै त्रिपता सह मिल

सदबल जाइए तेरा अंत ना पारावरिया। ओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राग आसा महला चौथा, सो परख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो परख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब ध्यावे तुद जी हर सच्चे सरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर ध्यावो संतोह जी सब दुख विसारन हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक भेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो से वह जो से वह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर ध्यावह तुद जी, से जिन जुग मह सुख वासी। से मुकत भये जिन हर ध्याया जी, तिन टूटी जम की फासी। जिन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी, तिन का भव सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। ते

पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांशद फल पावे सोई, दोख नात सह आपत कोई अड़ल।

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई बाकत नेत। स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई। जो यह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे। बिशन भगत किए फल होई आद ब्या छह सकै न कोई। सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वधी प्रथम सुख दावन। तौ प्रसाद

सबना कला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे, घर ता तेरे सब किछ है, जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द घनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान किता गुरु विटों, जिस दियां एह वडियाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, दुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे। कह नानक।

पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संता पुतरे सुनी सच्ची बाणी संत

सदा अंग संगे अपहंग देखते गोफते नुसुरदेत जनान गुरु गोविंद सिंह जी दरबार में तुर दरबारा सतखंड बसै लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबारा सरदे नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूर्ण गुरु अवतार जगमग ज्योत विराज रही श्री अब चल नगर।

0: आवाज छोड़ो थोड़ा, आज लास्ट है ना भाई जी। हाँ इधर से चलो थोड़ा बेटा, आवाज आवाज बाहर जाओ। नहीं बोलना
1: बोले।

0: राष्ट्रपति
1: सिमरो सिमर सिमर सुख पावो
0: कल कले तन माय मिटाओ
1: सिमरो जाल विसंबर एक है वेद प्राण सुन सुधक कर
2: राम नाम इंगाखर
1: किनका एक जी जी बसावे
2: बाकी महिमा गनी नावे
1: बाकी एक दर्श तुहारो
0: नानक सुख

0: जन प्रवान
1: सबको सिमरे से पुर प्रधान
0: सबको सिमरे से बेमोताजे
1: सबको सिमरे से सर्व के राजे
0: सबको सिमरे से सुखवासी
1: सबको सिमरे सदा विनाशी
0: सिमरन ते लागे जन आप दयाला
1: नाने जन की मंगे रवाला
0: सबको सिमरे से पर उपकारी
1: सबको सिमरे तिन सत बलिहारी
0: सबको सिमरे से मुख सुहावे
1: सबको सिमरे तिन सुख बिहावे
0: सबको सिमरे तिन आत्म

0: सिमरन कारज पूरे,
1: प्रभु के सिमरन कबू न चूरे,
0: प्रभु के सिमरन हर गुण बानी,
1: प्रभु के सिमरन सहज समानी,
0: प्रभु के सिमरन न चलनासन,
1: प्रभु के सिमरन कमल बिगासन,
0: प्रभु के सिमरन अनझनकार,
1: सुप्रो सिमरन कांत न पार,
0: सिमर से जन जन को प्रमया,
1: नाना तीन जन सरनी पया,
0: हर सिमरन कर भगत प्रकट आए,
1: हर सिमरन लग वेद उपाय,
0: हर सिमरन वैश जति दाते,
1: हर सिमरन नीचों कुंड जाते,
0: हर सिमरन धारी सब धरना,
1: सिमर सिमर

0: हर को नाम खिन माए उधारी
1: अनक पुना चरण करत नहीं तारे
0: हर को नाम कोट पाप पर हरे
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे
0: नाना पावो सुख नेरे
1: सकल सृष्ट को राजा दुखिया
0: हर का नाम जपत होए सुखिया
1: लाख करोड़ी बन न परे
0: हर का नाम जपा निस्तर
1: अनक माया रंग दिख न बुझ

0: पर नीच पे
1: हर की भगत मुकत भव करे
0: नानक जन संग के ते तरे
1: पार जाते हर को नाम
0: काम देन हर हर गुण काम
1: सबते उत्तम हर की कथा
0: नाम सुनत दस दुख लथा
1: नाम की महिमा संत
0: संत पर ता दुर सब न से
1: संत का संग बड़ पागी पाई।

0: अभ्यास क्रम धम क्रिया
1: सत्यापन मध्य फिरिया
0: अनेक प्रकार किए बहुत जतन
1: उन दानों में बहु रत्ना
0: ये कटाए हो मैं करत
1: व्रत नेम करे बहु बाती
0: नहीं तुल राम नाम विचार
1: नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार
0: नौ खंड पृथ्वी फिरे जिर जी
1: महा उदास कपि सरती है
0: अगन माए हो मत प्राण
1: अनेक सब है वर भूमि दान
0: योनि कर्म करे बो आस
1: जैन मा संजम मत साधन
0: निमक निमक कर सिर कटावे
1: तो भी हो मैं मेल न जावे
0: हर के नाम संसर्ग कछ नाही

0: वो साथ ना करे,
1: मानते कबो न भी क्या टरे,
0: जल धोवे वो दे अनी
1: सुध कहां होए काची पीत,
0: मन हर के नाम की महिमा ऊंच,
1: नानक नाम उतरे पतित बहु मोच,
0: बहु सियाणम जम का भो व्यापे,
1: अनि जगन का तृष्णा त्रापे,
0: एक अनेक अगन नहीं बुझे,
1: कोट पादर के नहीं सीजे,
0: झूठस नाहीं उपप्या,
1: मोह व्यापे माया जाल,
0: और करतू सगली जम

0: सो भालो रे
1: साथ संगे हो मैं छोरे
0: एको जन्म मरते डर
1: साजना की सरनी परे
0: जन को प्रभ दर्श प्यास
1: नाने ताके भल भल जासा
0: सगल पुरख में पुरख प्रधान
1: साथ संग जाका मिटे बिमान
0: आपस को जो जाने नीचा
1: सो कनिये सब ते ऊंचा
0: जाका मन हो सगर की रीना
1: हर नाम तिन कट कट चीना
0: माना प्रेते बुरा मिटाना
1: देखे सगल से साजना
0: दुख दुख जन सब दिशेता
1: नाने पाप पुण्य ले पा
0: निर्धन को धन तेरो नाओ
1: निधावे को नाव तेरा थाओ
0: निमाने को प्रभ तेरो माओ
1: सकटा को देवो दान
0: रावण हार स्वामी
1: सकटा के अंतर जामी
0: अपनी गद में जानो आप

0: मिट्यामन पर लोभ लुभावे, मिट्या वास ने तिकारा, सफल देना न कर नाम ले,
1: बिरती साकत की आर जा,
0: साज बिना कहो वसुचा,
1: बिरता नाम बिना तो

0: निमक जप नानकारी श्लोक काम क्रोध लोभ मोह विरत जाया मेव
1: नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव
2: जय प्रसाद छति अमृत खाए
1: दुष्टा कर को रखवन माए
2: जय प्रसाद सुगंध तन लाओ
3: जिसको सिमरत परम गत पावे
2: प्रसाद बसे सुख मंदर
3: जिसे त्याए सदा मन अंदर
2: प्रसाद ग्रह संग सुख बस
3: आठ पे

0: सुख सहज सोई
1: मन आठ पैता का जस का विजय
0: सबको माने
1: मुक्ता को जस सन पसाने
0: प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: मन सगाते आइए केवल पार ब्रह्म नानक पसे थी कर जावे लिवला वो तिस राम सने मन सुख पावे हर जस कहत मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके मन सा सिमरो प्रभु चे नानक ताकी पवत करे मानते सिमरत को आलसी जे मानते प्रभु को कबू ना बिसारे राख परोई प्रभु अपने मना ओटत बैठ

गुर प्रसाद नानक जस कहे, जय प्रसाद पेखे विस्माद, जय प्रसाद सुख सहजे बसना, जय प्रसाद संपूर्ण फले, जय प्रसाद सुख सह समावे। गुर प्रसाद

0: ज्ञान के संग प्रकटे सो ज्ञान
1: साथ के संग बुझे प्रभ नेरा
0: संग सबोध निबेरा
1: साथ के संग पाए नाम रतन
0: साथ के संग को पर जतन
1: साथ की महिमा बनने कौन परानी
0: नानक साथ की शोभा ब्रह्मा है समान
1: साथ के संग अगोचर मिले
0: साथ के संग सदा पर फूले
1: साथ के संग आवे बस

0: संग नानक प्रसुपर
1: साध संग दुश्मन समीत
0: साधु के संग महापुनीत
1: साध संग किसो नहीं बैर
0: साध के संग ना भीगा पैर
1: साध के संग ना ही को मंदा
0: साध संग जाने परमानंदा
1: साध के संग ना ही होता
0: साध के संग तजे सबाप
1: पापे जाने साध बढ़ाई
0: नानक साध प्रभु बने आई
1: साध के संग ना कब होता वे
0: साध के संग सदा सुख पावे
1: साध संग बसता गोचर लहे
0: साधु के संग अजर सहे
1: साध के संग बसे थान ऊंचे
0: साधु के संग महल पहुंचे
1: साध के संग दृढ़े सब धर्म
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाए नाम निधान
0: नानक साधु के कुर्बान
1: साध के संग सब कुल उधार
0: साध संग साजन मेट कुटुंब निस्तारे
1: साधु के संग सोतन पावे
0: जिस तन ते सब को वरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा
0: साध के संग शोभा सुर देवा
1: साधु के संग पाप पलायन
0: साध संग अमृत गुण गायन
1: साध के संग सर्व थान गम
0: नानक साध के संग सफल जन्म
1: साध के संग नहीं कष्कर
0: सज्जन बेटे दोत निहाल
1: साध के संग कलु खतहर
0: साध के संग नरक पर रे
1: साध के संग इहां उहां सोहेला
0: साध संग मित्र मेला
1: जो इच्छे सोई फल पावे
0: साध के संग न बिरता जावे
1: पार ब्रह्म साध रिद बसे
0: नानक उदरे साध सुन रसे
1: साध के संग सुनो हर नाम
0: साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग नमः।

0: अष्टपदी
1: जैसे जल में कमल लेप जैसे सुरसरव को शोक जैसे राज रंग को लगे तुल्पवान जो बसा को देखो चंदन लेप नानक जो पावक का सह सुभाव जैसे मेल न लागे जला जैसे तरु पर आकाश ब्रह्मज्ञानी के नए अभिमान मन अपने सबसे नीचा नानक जिन प्रभाव करे आत्म रस ब्रह्मज्ञानी जीना ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न भया ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत भरसे ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्मज्ञानी का नई विनाश ब्रह्मज्ञानी परोपकार ब्रह्मज्ञानी लेतावत बंदा ब्रह्मज्ञानी सुफल फला

0: आप
1: बड़भागी पाई है।
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर है।
1: कीमत नाई
0: ब्रह्म ज्ञानी के सवन मनवाए,
1: कौन जाने भी
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश।
1: कथिया न जाए
0: ब्रह्म ज्ञानी सरब का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की कथ ब्रह्म ज्ञानी जाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब

0: सादगी टहल सत्संग एक सबते जाने आपस को मंदा मन की वासना मन ते टरे नानक कोण में देखो ऐसा
1: प्रसन्न
0: की माया ते कोई
1: पिंड कर्म करत होय ने
2: करम का निर्मल धर्म
1: गाओ फल की इच्छा नहीं बाचे
0: केवल भगत कीर्तन संग्राचे
1: अंतर सिमरन गोपाल
0: परो वन कृपाल नानक को वैष्णव परम रखवावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल दया के दुष्टा संग कर पूजे सगल पार ब्रह्म जिस भगवती की मत उत्तम होवे मन तन अर्पे विषण परीत नानक ऐसा भगवती पवन को पावे राम नाम तम मैं सुदे
1: राम नाम सारस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे सो पंडित फिर जो नावे
1: पुराण सिमरत पूजे।

कल्याण रूप मंगल गुण गाम नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम तिसका नाम सत राम दास दास संतन पाए तिन पाया सो दास दर के परवान दास को आप कृपा करे सब सो जी परे ऐसे जुगत नानक राम दास जीवन मुकत सो।

तैसा रंग तैसा राजा ने नानक को पुरंग कहिए जीवन मुकत जे चित कर राखे तैसा ते नाओ प्रभा वैसो इपन हो गए लके न जाए पार ब्रह्म के रंग पार

0: कोटाचार व्यवहारे
1: कई कोट भय तीरथ वासी
0: कई कोट बन भ्रमे उदासी
1: कई कोट वेद के श्रोते
0: कई कोट तपीसर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान धारे
0: कई कोट कप का विचारे
1: कई कोट नौतन नाम ध्यावे
0: नानक करते का अंत न पावे
1: कई कोट भय अभिमानी
0: कई

0: राजस्थान सातक
1: कई कोट वेद प्रांत स्मृत शासक
0: कई कोट किए रतन समुंद
1: कई कोट नाना प्रकार जंतर
0: कई कोट किए चिर जीवे
1: कई कोट गिर में समती वे
0: कई कोट जग किन्नर पिशाच
1: कई कोट भूत प्रेत सुगर मृगाच
0: सबके नेरे सब होते दूर
1: नानक आपल पत्र या पर
0: कई कोट पाताल के वासी
1: कई कोट नरक सुरक निवासी
0: कई कोट जन्मे जीवे मरे
1: कई कोट भोजनी फिरे
0: कई कोट बैठत ही खाए
1: कई कोट काले तक पाए
0: कई कोट किए धनवंत
1: कई कोट माया में चिंतन
0: जय जय बाणा तत राखे
1: नानक सब के प्रभु के हाथे
0: कई कोट भय वैरागी
1: राम नाम सब तिरलिव लागे
0: कई कोट प्रभु को खोजंत
1: आत्म मैं पार ब्रह्म लांते
0: कई कोट दर्शन प्रभु प्यास
1: दिल को मिलियो प्रभु अविनाश
0: कई कोट मांगे सत्संग
1: पार ब्रह्म लगारंग
0: जिनको होए आप स्व प्रसन्न
1: नानक तेजन सदा धन धन
0: कई कोट खानी अर खंड
1: कई कोट आकाश ब्रह्मंड
0: कई कोट होए अवतार
1: कई जगत तीनों विस्तार
0: कई बार पसरियो पासा।

0: अष्टपति
1: करण करावन करने जोग
0: ज्योतिष पावे सोई होग
1: थाप थापन हारा
0: अंत नहीं कि पारा वारा
1: मैं धार अधर रहावे
0: भूख में उपजे उपम समावे
1: नीच व्यवहार
0: मैं अनेक रंग प्रकार
1: कर देखे अपनी वडिया
0: नानक सब में रह समाये
1: प्रपावे मानुगत पावे
0: प्रपावे ता पातर तरावे
1: प्रपावे बिन सास तेरा
0: प्रपावे ता हर गुण पाके
1: प्रपावे ता पतित उधारे
0: आप करे अपन बेचारे
1: सिर्या का आप स्वामी
0: केले बिकसे अंतर जामे
1: भावे सो कार करावे
2: नानक दृष्टि अवर्ण आवे
1: मानुते क्या हो आवे
0: ज्योतिष भावे सोई करावे
1: इसके हाथ होए ता सब किछ ले
2: ज्योतिष भावे सोई करे
1: अनजानत भिख्या में रचे
0: जे जानत अपन आप बचे
1: मैं भूला ते दिसता
0: निमक माए चार कुंड फिर आवे
1: कृपा जिस अपनी भगत दे
2: नानक के जन नाम ले
1: हिन में नीच कीट को राज
2: बार ब्रह्म गरीब निवाज
1: जाका दृष्ट कछु ना आवे
2: इस तत्काल दे दिस प्रतावे
1: को अपनी करे बख्शीश
2: ताका लेखा नग ने जगदीश
1: पिंड सब तिसकी राज
0: गट गट पूरण ब्रह्म प्रकाश
1: गणत आप बनाए
0: नानक जीवे देख बढ़ाए
1: इसका बल ना ही इस हाथ
0: करण करावन सरब को नाथ
1: आज्ञाकारी बपरा जी
0: ज्योतिष भावे सोई पुटियो
1: कबू ऊंच नीच में बसे
0: कबू सो करक संगसे
1: कबू निंद चिंद व्यवहार
0: कबू उपकाश प्याल
1: बेता ब्रह्म विचार
0: नानक आप मिलावन हार
1: निरत करे भव भार
0: कबू सोई रहे दिन रात
1: महाक्रोध विकराल
0: कबू सरब की हो त्रवाल
1: होए बहे बड़ राजा
0: कबू बेकारी नीच का साजा
1: अब की रत में आवे
0: कबू पला पला कहावे
1: प्रभ राखे तिभी रहे
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे
1: कबू होए पंडित करे बख्या
0: कबू मोन तारी लावे ध्यान
1: कबू तट तीरथ स्नान
0: कबू से साधक मुख्यान
1: कबू कीट हसत पतंग होए जी
0: अनेक जोन पर मैं पर मिया
1: नाना रूप जो स्वागी दिखा
0: जो प्रपावे तिवे न जावे
1: तिस पावे सोई होए
0: नानक तू जावर न कोए
1: साध संगत है पावे
0: उस स्थान ते बाहर न आवे
1: अंतर होए ज्ञान पर गा
2: उस स्थान का

जन्म मरे भोजन परमावे ज्ञान कृपा जिसके हृदय समान का संग न जावे बल भीतरता का होए विनाश में होए जाए बसमंत धर्म राय तिस करे कुआरे सोजन नानक करके परवान संपावे सगले बिरतारे नरक सुरक्षा।

माया पाछे पावे नै तृप्तावे कब कब मरे सुपन मनोरथ मिलते सब काजे वड़ बागी किसे प्राप्त होए सदा सदा नानक हर जाप इसके हाथ कहाँ विचार।

0: सब कुछ उसको करने हार सांत नंतर के सोए बहुत करे रंग पार नान कीमत कह न जाए गुरु प्रसाद किने बख्याने कोट में देखने मिले चीना असुंदरा पार अनूप
1: निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: गड़ गड़ सुने सर्वन बकाने पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
2: नाम जपे नानक मन प्रीत
0: संत सरन

0: अष्टपति
1: संत के दुखन आर जागटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छूटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन सो बातें ही ना संत के दुखन तान भ्रष्ट होए नानक सत्संग निंदक भीतरे संतन के दुखन काग जो लवे
1: संत के दुखन
0: जोन किरमाए
1: संत
0: के दुखन सबको छले
1: संत के दुखी ते संत के दुखन ते सब जाए
0: संत के दुखन नेक निचाए
1: संतों की कथाओं को नाए
0: नानक संत पावे ताओ बिगत पाए
1: संत का निंदक मात ताए
0: संत का निंदक खिंड कर न पाए
1: संत का निंदक मात यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राय ते
0: संत का निंदक दुख यार दीना
1: संत के निंदक को सरब रो
0: संत के

0: संत के दुखी को सब त्यागे,
1: संत का दुखी मां अहंकारी,
0: संत का दुखी सदा भिखारी,
1: संत का दुखी जन्मे मरे,
0: संत के दुख ना सुखते टरे।

0: दुखी अंतरते थोता
1: जो सास बिना मृतक की लोता
0: संत के दुखी की जड़ किच ना
1: आपन बीजा पे खाए
0: संत के दुखी को अवर न राखन
1: नानक संत पावे तले वार
0: संत का दुखी यूं बिलाए
1: जो जल भी उन मछली

0: राष्ट्रपति
1: मानुकीट एक वृत्ति सब जान
0: देवन को एक भगवान
1: रहे
0: बाल कृष्ण लागे आए
1: एक
0: मानु के किचाई हाथ
1: भूसुख हो
0: इसका नाम रखण परोए
1: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए
0: नानक।

0: के दुख
1: जिसको
0: संस्वेला नहीं दुलावे
1: जिस पर अपना जिस पर अपना कृपा करे
0: सो सेवक को किससे डरे
1: जैसा साथ ऐसा दिष्ट आया
0: अपने कार्य में आप समाया
1: सौदा सौदा सीजिया देखो सब कुछ मोल
0: नानक सो सुखम सो
1: मैं न कुछ मरे
0: आप

0: पावे बिसरा
1: नानक दिल पुरख को उत्तम कर मान
0: जो करे सो प्रभु के रंग
1: सदा सदा बसे हर संग
0: होए सो होए
1: करने आर पचाने सोए
0: प्रभु के बीच मीट लगाना
1: जैसा साथ है साधिष्ठाना
0: समाए समाए।

0: सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जन्म मरे फिर आवे जाए
1: किसके स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नाना जान
1: नाना जाके रंग
0: नाना पे करे रंग
1: विस्तार
0: प्रभ अपनासी एक कम कार पूरा सब टाए
1: नाना विधि के बंध बनाए
0: अपने कीमत आपे पाए
1: जिसके सब जिसके थाओ
0: सब जब जीवे नाना करना
1: सगर जंत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे सगल आकार नाम के संगुद्रे सुन श्रवण नानक चौथे पद में सो जन कर पाए पूरक सत केवल प्रदान सात पूरक समाय समाने मूल सत सत उत्पत जिसे बुझाए तिसे सब पले विश्वास सत नानक गुरते पाए सत्य जन जाके सत बचन साधु।

0: दर्शन ससत पे कन्हार
1: नाम सत सत्य
0: आप सत ससब धारी शब्द सत सत प्रवक्ता
2: सत सत
0: कन्हार को सत सब होए
2: नानक सत सत होए।

सो सेवक साथ साथ समारे, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने सेवक को नाम जपाए, ताकि घर में कोई न लाके, सबके सेवक ऊंचे ऊंचे, नानक सो सेवक

0: सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका
1: नानक हर गुण
0: अष्टपति
2: सतगुर सिक्की करे प्रपाल
0: सेवक को गुर सदा दयाल
2: गुर दुर्मत मल हिरे
0: गुर बच्चिया नाम उचरे
2: सतगुर सिक्के बंधन काटे
0: गुर का सिख पिकारते हटे
2: सतगुर सिक्को नाम दंदे
1: गुर का सिख बट भागी है
2: सतगुर सिक्का हलत पलत सवारे
1: सतगुर सिक्को जी नाल समारे
2: गुर के गृह सेवक जो रहे
0: गुर की आज्ञा मन में सहे
2: आपस को कर कछु न जनावे
0: नाम रुदे सद्यावे
2: मन बेचे सतगुर के पास
0: सेवक के कारज रास
2: सेवक तो
0: इसको होत पर आपस स्वामी
2: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक।

0: सियानत ले आना चाहिए।
1: नानक ऐसा गुरवर पागी पाइये,
0: सफल दर्शन पे गत पुनी
1: परसत चरण गत निर्मल
0: वेतर संग राम गुण रवे
1: पार ब्रह्म की दर के गवे
0: सुनकर बचन कर अगाने
1: मन संतो का तंप ध्यान
0: आखो जाका मन
1: अमृत के संत
0: गुण बियंत कीमत नहीं
1: पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए
0: देवा एक उस्ताद अनेक
1: सात पुरख पूरन विवेक
0: आओ बोलना पा उचित प्राणी
1: अगम गोचर प्रम निर्वाणे
0: मेरा हार निर्वेर सुखदाई
1: ताकि कीमत किने न पाए
0: नानक भगत बंधन नित कर
1: चरण कमल हृदय सिमरे
0: सद बलहारी सदगुरु अपने
1: नानक जिस प्रसाद है सा प्रभ जपने
0: ये हरस पावे जन कोए
1: अमृत पीवे अमर सो होए
0: उस पुरख का नहीं कदे विनाश हो
1: जाके मन प्रकटे गुणदास
0: आठ पैर हर का नाम ले
1: सच दे सेवक को दे
0: मोह माया के संग ना ले
1: मन में राखे हरे हरे
0: अंधकार दीपक प्रकाशे
1: नानक ब्रह्म दुख ते तेना से
0: आठ आठ वरताई
1: अनंत पया दुख नाटे भाई
0: जन्म मरण के मिटे अंधे
1: साधु के पूरन उपदेशे
0: बहु चुका निर्भो होय बसे
1: सकल व्याध मन ते के न से
0: जिसका तिन कृपा तारी
1: ना संग अब नाम मुरारी
0: पाए चुके प्रभु गवन
1: सुन नानक कर अर्जन सर्वन
0: निर्गुण आप सरगुण भी हो
1: कलादार जिन सकली मोए
0: अपने चरित्र प्रभु आप बनाए
1: अपनी कीमत आपे पाए
0: हर बिन दूजा नाही कोई
1: शरम निरंतर एको सोए
0: पोत पोत रव्या रूप रंग
1: भय प्रकाश सात के संग रच

0: राष्ट्रपति
1: संत जना मिल करो विचार
0: एक सिमर नाम अधार
1: समीत बिसारो
0: चरण कमल नित मैं और तारो
1: समृद्ध
0: कर गाओ नाम अरवत
1: संचो हो भगवंत
2: संजना का निर्मल
1: एक आश्रम।

0: जागे रे प्रेम से हरसोए सिमर सिमर सदा सुख पाओ भगत पाया तम परगास कौन नानक काटी जंपा से जन्म मरे सो काचो काचा
1: गवन मिटे प्रभ से
0: आप प्याग शरण गुरुदेव
1: जन्म का होए
0: उधार हरे सिमर प्राण आधार
1: सिमरै
0: सा सब एक बिचारे
1: करो मन लाए
0: मन वांछित नानक फल पाए
1: संग न चालस तेरे धना
0: तू क्या लपटावे मूरख मना इनते को तुम कवन सनाता इनते को कवन छुटकार जोटा डम जोट पासारे नाम विसार नानक पछताना
1: कीमत तू ले याने
0: भगत बिना बोर डूबे स्याने
1: बत करो मन मीत
0: निर्मल होए तुम्हारो चीत
1: कमल राखो मन मान
0: जन्म जन्म के किल बिक जाए
1: जपो अवरा नाम जपाओ
0: सुनक कैट लैट जग पाओ
1: सार भूत सथर को ना
0: सह सुभाय नानक गुण गाओ
1: दावत तेरे उतरस में
0: बिना जाए ओ मैं बिखैल
1: अंचित बसे सुखना
0: सास रासर नाम संभाल
1: सगली मन
0: सास संग पावे सजतना
1: कुंजी संस्कारो बिहार।

0: सदा प्रभु के गुण
1: गाओ, सास प्रभु तुम्हें ते आवो,
0: चरण कमल छू लागे
1: भगत करो प्रभु के नित नित,
0: एक ओट एको आधार
1: नानक मांगे नाम प्रसार,
0: आपकी दृष्ट महासुख हो
1: हर रस पावे बिल्ला कोए,
0: चाख्या से जंत
1: पूरन पुरक नहीं डोलाने,
0: सुभर भरे प्रेम रस रंग
1: उपजे चाओ साथ के संग,
0: परे शरण आन सब त्याग
1: अंतर परला सर निल्ले लाग,
0: बड़ भागी जप्या प्रभु सोए
1: नानक नाम रते सुखोए,
0: सेवक की मनसा पूरी
1: सदगुरु ते निर्मल मत लय,
0: जन को प्रभु होयो दया
1: सेवक की नो सदा निहाल,
0: बंधन काट मुक्त जन भया
1: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
0: इच पुनि श्रद्धा सब पूरी
1: राम रया सत्संग जुरी,
0: जिसका साथ इंद्रिया मिला
1: नानक भक्ति नाम समाए,
0: सोकुं बिसरे जे घाल भाने,
1: सोको बिसरे जे किया जाने,
0: सोकुं बिसरे जिन सब किस दिया,
1: सोको बिसरे जे जीवन जिया,
0: सोकुं बिसरे जे अगन में राखे
1: गुर प्रसाद को बिल्ला लाके,
0: सोकुं बिसरे जे बिखते काढ़े
1: जन्म जन्म का टूटा काटे,
0: गुर पूरे तत ए बुझाया
1: प्रभु अपना नाम एक जन त्याया,
0: साजन संत करो यो काम
1: आन त्याग जपो वर नाम,
0: सिमर सिमर सिमर सुख पाओ
1: आप जपो अमरा नाम जपाओ,
0: भगत भाई तेरे संसार
1: बिन पंक्ति तन हो सी चार,
0: कल्याण सुख निधना
1: बूढ़ा जात पाए विश्राम,
0: सगल दुख का होत ना
1: नानक नाम जपो गुंतास,
0: जी प्रीत प्रेम रस
1: मन तन अंदर हे सुआओ,
0: नेत्र हो पेक द्रस सुख होए
1: मन बिकसे सा चरण तोए,
0: भगत जना के मन तन रंग
1: बिल्ला को पावे संग,
0: बस दुजे कर्मया
1: गुर प्रसाद नाम जप लया,
0: बाकी उपमा कहीं न जाए
1: नानक रया सरब समाए,
0: प्रभु बख्शन दीन दया
1: भगत वचन सदा कृपाल,
0: नाथ गोविंद गोपाल
1: सरब कटा करत पाल,
0: पूरक कारण करता
1: भगत जना के प्राण धार,
0: जो जो जपै से होए पुनीत
1: भगत पाए लावे मनीत,
0: हम निर्गुण यार नीच अजान
1: नानक तुमरे शरण पुरक भगवान,
0: सब वैकुंठ मुखत उपाय
1: एक निवा करके गुण गाए,
0: अनेक राज भोग बढ़िया
1: हर के नाम की कथा मन भाई,
0: ओ भोजन का पर संगीत
1: रसना जपती हर हर नीत,
0: सो करनी शोभा धनवंत
1: प्रेम से पूरन गुरमंत, साध संग प्रभ देओ निवास, सर गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप,
2: आपन किया नानका आपे ही फिर जाप,
1: अष्टपति
2: जब आकर
3: जब दारी कछु न दिसता
1: पाप उन तब कहते होता,
3: जब दारी अपन सुन समा
1: तब पैर विरोध के संग कमाते,
3: तब इसका बरन चेहर न जा
1: तब अरक सो को किस

0: तब शिव शकत को किठाए तब कवन निडर कवन कट डरे नानक ठाकुर अगम पार है जन्म मरण को कहा विनाशन
1: पूरन करता प्रभु सोए
0: तब जम की त्रास को किसोए तब चित्र को पद किस पूछत लेका
1: निरंजन गोचर
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बाजे नानक अपन रूप पापे पर जा
1: निर्मल पूरक पूरक
0: मैल को क्या तोता
1: निरंजन निरंकार निर्माण
0: कौन को मान कौन अभिमान
1: स्वरूप केवल जगत
0: चल चेत जगत को
1: ज्योत स्वरूप ज्योत संग समान।

0: अष्टपति
1: आप कथे आप सुनने हार
0: आपे कापे विस्तार
1: भावेता सृष्टि
0: अपने पाणे लय समाए
1: ते भी नायकी
0: छो आपन सो सब जगत परोए
1: जाको प्रभु जी आप
0: सच नाम सोई जन पाए
1: सुंदर सी तत्काल
0: नान

0: संत जना का पेखन सब ब्रह्म,
1: संत जना के हृदय सब करण,
0: संत जना सुने सब बचन,
1: सर्वव्यापी राम संरचन,
0: जिन जाता तिसकी एह रहत,
1: संत बचन साधु सब कहे,
0: जो जो होए सोई सुख माने।

0: ने कस करा
1: आप पलाकर तू तनी
0: आपे जाने अपने जी की
1: आप सास तारी सब सास
0: और कोत अपन संग्राज
1: साकी गतमित कहीं न जाए
0: दूसर होय तसो जी पाए
1: इसका किया सब परवार
0: पर प्रसाद नानक क्यों जान
1: जो जाने ते सदा सुख होए
0: आप लाए ले प्रभु सोए
1: वो तनवंत कुलवंत

0: प्रधान पुरुष प्रकट सब लोए
1: बाल
0: नवे आवश्यक
1: चले जन
0: मानक जिसे पर आप तोए
1: बोलते
0: के आज सरप तैसे ते
1: जो प्रज्ञान
0: ज्ञान जेठ उत्तम स्नान
1: पदारत कमर बगा
0: सत्य

तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताका बिघन न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास जी की बिरता होए सो गुर पे अरदास कर छोड़ सियानव सगल मन तन अरप धर वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी।

घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। धन धन साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, आप जी दे पावन पवित्र स्थान। तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहेब विखे, तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। धरन गगन नौखंड में ज्योत स्वरूपी रहयो भर, भन मथुरा कर भेद नहीं गुर अर्जुन पर तख हर। ऐसे दीन दयाल सदगुरु, वाणी के बोहित कलयुग के जहाज, शहीदा दे सिरताज। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहीदी गुरुपुरब मनांदे हुए, गुरु का खालसा संस्था ते समूह साध संगत वल्लो महाराज, आप जी दे पावन पवित्र स्थान। तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे, समूह संगत ने रल मिल के सच्चे पातशाह जी ओ महाराज, आप जी दी दरगाही अते इलाही बाणी श्री सुखमनी साहेब जी दे पाठ, श्री चौपाई साहेब जी दे पाठ, अमृतमयी बाणी दा कीर्तन होया सच्चे पातशाह जी ओ महाराज, गुरमत विचारा होया सच्चे पातशाह जी ओ महाराज, कृपा करनी बाणी पढ़दियां हुई अनेक प्रकार दी लगन ना तुक भूल चुक माफ करना, पढ़ी सुनी बाणी सचखंड विच प्रवान करना, बाणी दा भाव बाणी दा सारा ही महत्व अपनिया साजिया निवालियां संगतां दे ताई बख्शना, संगतां दे आस मनोरथ पूरन करना,

0: कलगीधर सोहमरी रक्षा करे गुर कलगीधर बोले सोने
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

हम पापन विचार हम नरक से अवतार हम छसे हम जरोए हम परिए हम तव हम जाति जिसी कोय हम छ मूर्ख हम सियाणा मत मत किसार राणा हम छ माया हम छाया हमें कपर जंत पाया हमें बुझे ता दर्श जे ज्ञान।

कौड़ी सेव कीते संतों की दिन सचो सधियाया उन्नी बंदे पे ना रखियो कर सुमर धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदनान पाने थोड़ा खाया तू बख्शिश अगला।

नानक दिल पाए के समाले समना जिन करते करना किया चिंता भी करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाए जाग ते सवारी स्वास्थ्य दस